0: गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजीनगर. उठा उठा सकाळ झाली आणि लॉंग विकेंड नंतर बॅक टू वर्क जाण्याची ही वेळ आलेली आहे. तुम्ही ट्यून केलंय MGM 90.8 FM आणि एक्झॅक्टली 7:12 वेळ झालीये. और लॉंग विकेंड के बाद भाई वापस से ऑफिस जाने का थोड़ा आलस आ ही जाता है. हाँ, उन लोगों के लिए नॉर्मल होगा ये आज का मंडे जिनको वीकेंड के दो छुट्टियां होती थी, लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ा ऐसा यार फिर से मंडे आ गया ये वाला सीन होगा जिनको वीकेंड की बस एक छुट्टी मिलती थी बट सैटरडे संडे मिल गया था, तो इस वजह से उन्होंने लंबा वीकेंड तो एंजॉय किया ही है. सो आज के शो का आगाज करते हैं. और आज का दिन देखो कैसा भी हो आपका खूबसूरती से गुजरने ही वाला है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ मेरी जान. बस एक कोट याद रखिएगा कि अपने अंदर का जो आलसपन है ना उसको दूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि कल करे सो आज करे सो अब कर. ये मंत्र फॉलो कीजिएगा और आपके लाइफ को झिंगलाला हो करके एकदम सुकून के साथ गुजारेगा, वरना आप हमेशा अपने काम पेंडिंग रखोगे तो फिर स्ट्रेस और टेंशन अपने आप बढ़ ही जाता है. तो ये लाइफ मंत्र हमेशा याद रखिए, फिर से दोहराता हूँ, कल करे सो आज करे सो अब. इसी सुविचार के साथ आज के मंडे का वेलकम करते हैं मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ. आज की शुभ बातों का सिलसिला जारी ही रहेगा बट कुछ ही देर बाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून.
1: Only on MGM 90.8 FM.

है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक लड़का था, हर रात सोने से पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता, यानी कि मेरे और आपके जैसा ही, हमें भी वही आदत है। एक दिन उसने देखा कॉलेज का एक दोस्त फॉरेन ट्रिप पर था, दूसरे दोस्त ने नई कार ली थी, किसी के एंगेजमेंट हो गई थी, किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और एक दोस्त जो कभी उसके साथ पढ़ाई करता था आज एक बड़े ऑफिस में काम करता है। उसने फोन साइड में रखा और खुद से कहा, सब आगे निकल गए यार, मैं ही वही का वही रह गया। अगली सुबह भी वही फीलिंग, ऑफिस गया, काम किया, लेकिन दिमाग में बस एक ही थॉट, मेरी लाइफ कब सेट होगी। शाम को घर आया, माँ ने पूछा, बेटा खाना खा लेगा? उसने कहा, बाद में, और चुपचाप रूम में चला गया। फिर उसकी नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी, उसने डायरी खोली, एक पेज पर लिखा, एक दिन मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूँगा। वो कुछ देर तक उस लाइन को देखता ही रहा, फिर उसने सोचा, मैं ये कब भूल गया कि मैं किस लिए शुरू हुआ था। उसने फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला, इस बार उसने दूसरों की स्टोरी नहीं देखी, अपनी पुरानी फोटो देखी, एक साल पहले की फोटो, जब वो एक छोटी सी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा था। फिर कुछ महीनों पहले की फोटो, जब उसने पहली बार अपनी सैलरी से घर के लिए कुछ खरीदा था, और तब उसे समझ आया वो पीछे नहीं रहा, वो बस अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर करता रहा। हम सबके पास ना एक इनविजिबल टाइमलाइन होती है, किसी को सक्सेस जल्दी मिलती है, किसी को थोड़ी देर से, किसी का रिलेशनशिप पहले सेटल होता है, किसी का करियर, किसी का घर पहले बनता है, किसी का कॉन्फिडेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बाद में हो रहा है वो कम है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सबके लाइफ सेट है बस मेरी नहीं, तो एक बार रुकना, अपने पिछले वर्जन को याद करना और खुद से पूछना, क्या मैं सच में वही हूँ जो एक साल पहले था? अगर जवाब नहीं है तो भाई तुम स्टक नहीं हो, तुम ग्रो कर रहे हो, बस तुम्हारी स्टोरी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। याद रखिए,
1: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

Let's play the game with RJ Adnan in the show. आपके साथ एक गेम खेलता हूँ जिसमें आपको गिफ्ट जीतने का एक मौका मिलता है, और आज मैं आपसे पहले नहीं पूछूंगा लेकिन एक म्यूजिक आपको सुनाऊंगा और आप मुझे बताना कि कौन से गाने की म्यूजिक है।

0: सो बताइए बताइए ये कौन से गाने की म्यूजिक है। देखो ओल्ड सॉन्ग है और बहुत ही बेहतरीन गाना है, दिल के ऊपर से शुरू होता है। अभी इतनी मैंने हिंट दे दिया तो आप मुझे जवाब भी व्हाट्सएप कीजिएगा 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। जो सबसे पहले जवाब देगा उसे गिफ्ट मिलने वाला है, तो जल्दी कीजिएगा, देर मत कीजिए और जवाब दीजिए, गिफ्ट जीतिए। सुनते रहिए
1: Only on MGM 90.8.

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न ला

0: फरमाइश और फरमाइश, आपकी फरमाइश सराखों पर MGM 90.8 FM पर RJ अदनान आपके साथ है और आज फरमाइश आई है रोहित जादव की इस गाने के लिए।
1: बाबूजी धीरे चलना।
0: वाह क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है। तो चलिए फिर रोहित जी की फरमाइश पूरी करते हैं और उनका फेवरेट गाना प्ले करते हैं। बाय द वे तुम जिसका कहीं फरमाइश असल तो तुम्हें व्हाट्सएप करूँ नक्की करू सकता। व्हाट्सएप करा 9359320801 9359320801 एंड स्टे ट्यून ऑन MGM 90.8 FM।

0: फोन बजता है, अननोन नंबर होता है और हम सोचते भाई कोई स्कैमर तो नहीं होगा ना ये, एक मन में सवाल आ ही जाता है। लेकिन अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। आजकल हम देख रहे हैं कि अननोन कॉल्स बहुत आते हैं, मतलब हमारा बंदा बंदी दोस्त अहबाब फैमिली मेंबर्स हमें इतने कॉल नहीं करते जितने ये फेक कॉल आते हैं, फ्रॉड वाले कॉल हमें आते हैं हर दिन। तो आप TRAI, ये क्या है पता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1601 नंबर से सीरीज लॉन्च की है। जी हाँ, जिसका मेन मोटिव क्या है, जो फ्रॉड कॉल है फेक कॉल है उनको एकदम आसान तरीके से आइडेंटिफाई करना। मतलब क्या है, यूटिलिटी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर अगर आपको कोई कॉल करेगा, मतलब जो लीगल हो, जो आपके पास कोई एडवर्टाइजमेंट पहुंचाना चाहती हो, कोई सर्विस देना चाहती हो और रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने के साथ, तो उनको ये नंबर दिया जाएगा। 1601 से इस सीरीज का स्टार्ट होगा। तो आप समझ जाओगे कि यार ये किसी दोस्त का कॉल नहीं है, किसी कंपनी का कॉल है और ये ट्रस्टेबल कॉल है। बट इतना है कि ये फ्रॉड कॉल नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए या सर्विस प्रोवाइडर का नंबर है, तो ये क्लियर हो जाएगा। एंड और एक बात, अगर 1601 से भी आपको कॉल आ रहा है और वो ट्रस्टेबल है, अगर सामने वाले बंदे ने आपसे OTP पिन या बैंक डिटेल मांगी, तो भाई उसको बिल्कुल भी मत दीजिएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ऑफिशियल्स खुद कहते हैं कि हम खुद से आपका OTP, बैंक अकाउंट, CVV कभी भी नहीं मांगते। तो कोई भी कॉल हो, अपना ये डिटेल किसी को मत दीजिएगा। तो फोन पर भी थोड़ा स्मार्ट बनिए, क्योंकि स्कैम से बचने का सबसे पहला स्टेप है अलर्ट रहना। जितना आप अलर्ट रहोगे उतना सेफ रहोगे। और ये बात मुझे और आपको तो समझ में आ जाती, लेकिन जो हमारे दादा दादी है या मम्मी पापा है उनको भी जरा समझाइएगा और ऐसे स्कैम से थोड़ा बच के रहिएगा। बाकी बी सेफ बी केयरफुल, बस स्क्रॉल मत कीजिए, स्मार्ट भी बनिए एंड बाकी तो सुनते रहिए।
1: Only on MGM 90.8 FM.
2: गुस्ताख नजर चेहरे से हटा, हमको न सताओ, अरे जा चल जा।

अक्सर कहते हैं कि एम्बुलेंस कभी वक्त पर नहीं पहुंचती, और ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हमारे सामने है। एंड जब एक्सीडेंट होता है तो वक्त पर एम्बुलेंस ना पहुंचने की वजह से तो बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। तो अब एम्बुलेंस की रिस्पांस टाइम को लेकर NHAI ने सख्त रूल लागू किए हैं, जिसको फॉलो करना कंपलसरी हो चुका है हर एम्बुलेंस ड्राइवर को और उस पर काम करने वाले लोगों को। नए रूल्स के हिसाब से क्या है कि अगर टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के एरिया में एक्सीडेंट होता है तो इमरजेंसी कॉल रिसीव होने के 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस को एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचना कंपलसरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंचती तो ऑपरेटर पर 10,000 का फाइन भी लग सकता है, और 10 मिनट के बाद हर एडिशनल मिनट पर 5,000 की पेनल्टी भी उन्हें लग सकती है। मतलब 10 मिनट में एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो 11वें मिनट पर 5,000 एक्स्ट्रा पेनल्टी उन्हें लग सकती है। ऐसे इस रूल्स और रेगुलेशन में लिखा गया है, जो कि नए तरीके से अभी लागू कर दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है, जैसे कि एक्सीडेंट के बाद एम्बुलेंस को इंजर्ड पर्सन को कॉल रिसीव होने के 1 घंटे के अंदर नजदीकी हॉस्पिटल तक ले जाना है। इसमें भी अगर डिले हुआ तो 10,000 का फाइन लग सकता है। देखिए, एक्सीडेंट के बाद ना हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी वही एक मिनट किसी की जिंदगी और मौत के बीच का एक डिफरेंस बन सकता है। इसलिए अगर आप गाड़ी हाईवे पर चला रहे हो या फिर किसी नॉर्मल रास्तों पर, स्पीड से ज्यादा सेफ्टी को प्रायोरिटी दीजिएगा। और अगर एक्सीडेंट दिखा तो सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में मत बैठिए, मदद के लिए इमरजेंसी सर्विस को कॉल कीजिए। और ये अभी ऐसे कुछ रूल्स और रेगुलेशन NHAI ने सभी हाईवे पर जितने एम्बुलेंस है ना तो उनको लागू किए है, तो इसको भी याद रखिएगा। एंड 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंचेगी, यही अभी हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर 10 मिनट में डिलीवरी पहुंच जाती है खाने की, लेकिन एम्बुलेंस पहुंचने में टाइम लगता है। शायद से ऐसे रूल्स और रेगुलेशन से होप्स ये डिफरेंस खत्म हो जाए। बाकी आपकी भी जिम्मेदारी है, गाड़ी आहिस्ता से चलाइए, आराम से चलाइए, क्योंकि जान है तो जहान है मेरी जान। बाकी तो RJ अदनान के साथ अभी शो बहुत बाकी है, सुनते रहिए।

0: अक्सर हमने एक लफ्ज के बारे में सुना होगा, सेल्फ लव। कहना रील्स में हमने देखा है या मोटिवेशनल वीडियोस में देखा है, और हमारे दोस्त भी कहे थे जब ब्रेकअप होने के बाद, भाई बस हो गया, आप खुद से प्यार कर, सेल्फ लव। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है? तो इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है साइकेट्रिक्स डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर। हेलो सर, आपका स्वागत है।
1: हेलो,
0: कैसे हो सर आप?
1: आई एम गुड
0: सर। आपने किया है खुद से प्यार, सेल्फ लव?
1: हाँ बिल्कुल करता हूँ।
0: कब से?
1: इसके बारे में समझ आई तब से, और उसके वैल्यूज पता चले, देन आई स्टार्टेड लिविंग माय सेल्फ।
0: एग्जैक्टली, जब खुद की वैल्यू पता चलती है, उस चीज की वैल्यू पता चलती है, तो इंसान सेल्फ लव करता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे सर, क्योंकि सेल्फ लव ये बहुत सुना है, लेकिन सेल्फ लव और सेल्फिश होने में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है?
1: देखो, सेल्फ लव यानी क्या है ना, कि खुद की वैल्यू करना, ठीक है। जैसे हमें फिजिकली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली हमें खुद को फिट रखने के लिए हम जिस तरह से उसके लिए हम अटेम्प्ट करते हैं या हम ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें अपने अंदर से खुश रहना है, मुझे फिजिकली बहुत ज्यादा एग्जर्ट नहीं करना है, वैल्यूज भी मुझे बरकरार रखने हैं, और मुझे दूसरों का भी रिस्पेक्ट करना है, देन हम उसे कहते हैं कि हाँ ये सेल्फ लव है। अब सेल्फ लव में क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें आती है कि जिसमें कि क्या होता है, बहुत सारे लोग है ना आउट ऑफ द वे जाके खुद को, यानी ट्रबल अगर हो रहा है या परेशानी हो रही है तो भी दूसरों के लिए वो बहुत सारी चीजें करते हैं, बट इसमें क्या होता है ना कि उनमें उससे स्ट्रेस आ सकता है, उनमें फिजिकल एग्जर्शन आ सकता है, बर्नआउट हो सकता है, तो लोगों को उसके लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। तो हम लोग हमारे खुद के लिए, हमारे फैमिली के लिए हम कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तब उसे कहा जाता है कि सेल्फ लव। इक्वली बट हम लोग दूसरे के वैल्यूज भी रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दूसरों को भी उनकी इमोशनल और उनकी भावनाएं का भी हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पर हम हमारे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मैं खुद के लिए कुछ चीजें करूंगा जो कि मेरे घर वाले या मेरे लिए बेनिफिशियल हो, या मेरे फिजिकली मुझे हार्म ना करे, इमोशनली हार्म ना करे, साइकोलॉजिकली हार्म ना करे, और मैं कुछ बाउंड्री सेट करूं, तो हम उसे कहते हैं कि सेल्फ लव है। सेल्फिश मींस क्या है ना, उसमें चीजें सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लिए ही करना, दूसरे के वैल्यूज का सम्मान नहीं करना। अगर उसे दिक्कत आ रही है मेरे से कुछ बात करने से, या मैं एक चीज इस तरह से डिसीजन दे रहा हूँ कि दूसरों को हार्म हो रहा है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसे तकलीफ हो रही है दूसरों को, पर मैं मेरे ही बारे में सोच रहा हूँ, देन हम उसे कहते हैं कि देन दिस इज सेल्फिश लव। बट सेल्फ लव में इट इज नॉट देयर। सेल्फ लव में यह है कि हम खुद के लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करते हैं, हम हमारा खुद का ख्याल करते हैं, क्योंकि मैं जैसा, अगर मेरे कोई प्रिय व्यक्ति हो या मेरा कोई प्रिय फ्रेंड हो जिसके हम आदर सम्मान करते हैं, उसे रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह हम खुद का भी करना चाहिए, हमारे खुद के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में सोच, तब उसे कहा जाता है कि दिस इज सेल्फ लव।
0: तो सेल्फ लव पर हम और भी ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन कुछ ही देर में, तब तक स्टे ट्यून्ड।
2: Only on MGM 90.8 FM.

0: Let's talk about mental health and self-love. You are listening to MGM 90.8 FM. और हमारे साथ है डॉक्टर अमोल पात्रीकर साइकेट्रिक्स। तो आज हम बात कर रहे हैं अबाउट सेल्फ लव के बारे में।
1: अगर हम हर बार दूसरों को प्रायोरिटी देते रहे और खुद को इग्नोर करें तो इसका मेंटल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है?
2: उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अभी क्या है, हमें हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि लोग आउट ऑफ द वे जाके सिर्फ सामने वाले उस व्यक्ति को बुरा ना लगे या उसकी नजर में हमारा इम्प्रेशन बना रहे, इसलिए वो आउट ऑफ द वे जाके उनका एफिशिएंसी व कैपेसिटी नहीं होने के बाद भी वो उनके लिए चीजें करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कोई फाइनेंशियल चीजें, किसी को हेल्प चाहिए, अभी वो हमें मांग रहे हैं, हम खुद उसमें नहीं है उस पोजीशन में, बट मैं क्या करूंगा एट द कॉस्ट ऑफ, यानी मेरे पर्सनल फैमिली सब चीजें कॉम्प्रोमाइज करके मैं उसको समझो अगर मैंने कुछ पैसे दे दिए, फिर होगा क्या कि एग्जांपल में कि उसके वजह से मुझे दिक्कत आएगी फाइनेंशियली, मुझे परेशानी होगी, मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा, मेरी फैमिली या मैं खुद सफर होऊंगा बस उसको ठीक करने के लिए। तो क्या होता है, मेंटली ये बहुत एग्जॉस्टिव है। तो क्या है कि अगर आपको आपके दिमाग में आप आउट ऑफ द वे जाके सामने वाले को ना नहीं कह पा रहे, यानी आपको पता है कि ये चीज मुझे करना जरूरी है बट मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरा सेल्फ एस्टीम बरकरार रहे, मेरा इंप्रेशन उसके लिए अच्छे रहे, तो मैं खुद का कॉम्प्रोमाइज करूँ, तो आपको देखो एग्जॉशन होगा, बर्नआउट हो जाओगे, आप चिड़चिड़े बन जाओगे, आपको डिप्रेसिव फीलिंग आ जाएगी, उदासी मायूसी आएगी। दूसरा क्या रहेगा, आपके जो खुद के गोल और ऑब्जेक्टिव है आप उसको भी, उससे भी आप डिविएट हो जाते हो इस चीज से। तो क्या है ना कि दिस इज नॉट द थिंग, आप करो, आप दूसरों को खुश कर सकते हो, दूसरे के लिए करना जरूरी है, बट अपनी खुशी या उस वक्त अगर उस चीज का मुझे स्ट्रेस आ रहा है तब मैं वो चीज वो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो क्या है कि आप करना चाहिए बट नॉट खुद का फिजिकली भी आप सफर हो, साइकोलॉजिकली सफर हो, इमोशनली आपको स्ट्रेस आ रहा है, दिस इज वी से कि हाँ कि यहाँ पर हमें थोड़ी सी बाउंड्री सेट करनी चाहिए।
0: तो ये सारी बात याद रखिएगा और जिंदगी से जस्ट प्यार किए जा मेरी जान। और भी अपनी बातें शुरू रहेगी बट कुछ ही देर में, तब तक स्टे ट्यून्ड।
3: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: வெல்கம் பேக். யூ ஆர் லிஸனிங் MGM 90.8 FM. और आज हम बात कर रहे हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर के साथ अबाउट सेल्फ लव इस टॉपिक पर.
1: और सर, बहुत लोग जब नो कहते ना कहते किसी भी चीज को और अपनी बाउंड्री सेट करते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें गिल्ट फील होता है कि यार मैंने ना कह दिया, ये सही है या नहीं. तो इस गिल्ट से डील कैसे करें?
2: देखो, अभी गिल्ट क्या है, गिल्ट इज अ नॉर्मल हैबिट फॉर्म, यानी क्या होता है, इट्स एक नॉर्मल थॉट है, वो हमें आ सकता है किसी भी चीज के लिए. पर मैं यही कहूंगा, देखो गिल्ट में क्या है ना, कुछ चीजों के लिए ठीक रहता है, यानी वो आया तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तब हम सामने वाले को सॉरी कहते हैं, या फिर हमें अंदर से खराब लगता है तो हम उसमें खुद में इम्प्रोवाइज करने के लिए करते हैं, उसके लिए ठीक है. बट अगर गिल्ट घर कर गया तो फिर वो आपको उसके बारे में आपको पास्ट में ले जाता है, फिर पास्ट में आप उस पास्ट में सोचते हो, उसमें ही फंस जाते हो कि मैंने ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, और उसके वजह से फिर से जिसमें डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है. गिल्ट फीलिंग अगर बहुत ज्यादा देर तक रही तो उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं, आप फिजिकली भी आप इन्हें वीक फील करते हो, डीमोटिवेटेड फील करते हो, जैसे मैंने कहा अपना खुद का गोल्स और ऑब्जेक्टिव से आप डिविएट होने लगते, देन इट इज हार्मफुल. पर अभी हमें ये क्या करना चाहिए, पहली बात यहां से स्टार्ट करना चाहिए कि भैया आई एम गिल्टी, ये वर्ड यूज करने के बजाय हम ये खुद को ये कहे कि आई हैव गिल्ट फीलिंग, ताकि क्या है, देखो आपका इंडिविजुअलिटी है, आप गिल्टी नहीं हो, आपका उस तरीके फीलिंग है, और उस थॉट के ऊपर हमें काम करना चाहिए. सबसे पहले हमने इस चीज को चैलेंज करे, इस थॉट को, कि भाई ये चीज उस वक्त पे, इस चीज के लिए, उस समय के लिए मैंने जो डिसीजन लिया वो जरूरी था, उसके प्रोज और कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे उस वक्त, उसके सही और गलत चीजें क्या थी. माना अगर मैंने ये खुद से सेल्फ टॉक भी करना होना जरूरी है, कि अगर मैंने उस वक्त पे इस व्यक्ति को कि मैंने ना कहा, अगर मैं हाँ करता था तो मुझे ये चीज लाइफ में फेस करनी पड़ती थी, आज मैं ना कर रहा हूँ तो ना भी चीज की है तो वो आपने अच्छा किया है, आपने उसको हार्म नहीं किया है, ना करना मीन्स हार्म नहीं है. हाँ, आपने रादर क्या किया है कि आपने उसको अच्छे से सीधे तरीके से आपने अच्छे से उसे बताइए कि हाँ ये मैं चीज नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन दैट कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आई एम नॉट गिल्टी, बट हाँ गिल्ट फीलिंग है और उसे मैं सुधारूंगा, बाय मिस्टेकली मैं उससे बात कर सकते हैं, आप अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सामने वाले को मैंने हर्ट किया है तो आप उसे सॉरी कह दीजिए और उसे ये बताइए कि ये चीज है, इस वजह से मैं नहीं कर सकता, बट डोंट गिव दैट मच एक्सप्लेनेशन. आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आप देना चाहते हो तो दो, बट साइमल्टेनियसली आप खुद के लिए अगर आपका अगर सुकून ठीक रह रहा है, आपका हैप्पीनेस बरकरार रह रहा है, आपको उस चीज को स्ट्रेस नहीं आ रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ये चीज एक्सेप्ट करना जरूरी है.
0: यस सर. तो सर के साथ अपनी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, कीप मुस्कुराना, लेकिन आप कहीं मत जाना, लौटे की कुछ देर बाद, तब तक स्टे ट्यून्ड.
3: ओनली ऑन MGM 90.8 FM.

0: जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है खुद से प्यार करना, वही आपको सीखना चाहिए। हेलो, आपने ट्यून किया है MGM 90.8 FM और हमारे साथ है साइकेट्रिक्स अमोल पात्रीकर सर।
1: और सर, अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना सेल्फिशनेस नहीं बल्कि इमोशनल मैच्योरिटी की निशानी हो सकती है क्या, और इसको कैसे समझे खुद भी और बाकी सब लोग?
2: देखो, बिल्कुल इमोशनल मैच्योरिटी है, क्योंकि देखो पहले सेल्फ रियलाइजेशन होना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी। मुझे ये पता है कि मैं ये चीज नहीं कह पा रहा हूँ सामने को, तो ये चीज क्योंकि मेरी कुछ प्रायोरिटीज है, मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ मेरे हैप्पीनेस के लिए। ये रियलाइजेशन होना इटसेल्फ इज अ मैच्योरिटी ना। आपको पता है कि ये मेरी चीजें है, मैं यहाँ तक मेरी कैपेसिटी है, यहाँ तक मैं कर सकता हूँ, बट आउट ऑफ द इस कैपेसिटी के बाहर मुझे अगर मैं करूँ तो मुझे इससे परेशानी हो सकती है, मुझे दिक्कत आ सकती है पर्सनल लेवल पे। तो वो चीज अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें देखो वो मैच्योरिटी ही, आपको इस सेल्फ रियलाइजेशन आ रहा है। दूसरा, आपको आपके स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस पता है, वो भी सेल्फ रियलाइजेशन है, एक्सेप्टेंस है उसके बारे में। आप खुद के अंदर, आप इफ यू सी इनटू योर सेल्फ, आप खुद के अंदर देखते हो तो आपको ये चीजें पता है कि हाँ ये मेरे स्ट्रेंथ है, ये मेरे वीकनेसेस है, आपको वो चीज का बहुत क्लियर ज्ञान है। इट्स अ साइन ऑफ अगेन मैच्योरिटी। तीसरा, कि आप कॉन्फिडेंटली सामने वाले को ये कह सकते हो, आप उसे ये मैसेज दे सकते हो, क्योंकि क्या है बहुत सारे लोग तो वो बात ही नहीं कर पाते हैं। बात करना इटसेल्फ इज अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, कि मुझे बहुत क्लियरली सामने वालों को बताना है, अच्छे से बताना है, क्लियरली बताना है, बट एंड हमें हेट्रेडली नहीं बताना है या उसे बहुत खराब लगे इस तरह से भी नहीं बताना है। तो ये जिस तरह का कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इटसेल्फ इज एन इमोशनल मैच्योरिटी, क्योंकि वो इट्स अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि सामने वाले को आपको नाराज करना है या ना कहना है। सो दीज आर ऑल थिंग्स कि सेल्फ एक्सेप्टेंस है, सेल्फ रियलाइजेशन है, एंड हमारा कंट्रोल्ड है। उसे अगर हमें मैसेज देना है या बताना है तो हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में है, एंड वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो ये चीजें डेफिनेटली इट शोज कि आप में वो इमोशनल मैच्योरिटी आती है।
0: तो सर के साथ अपनी बातों का सिलसिला भी यूं ही जारी रहेगा। ये सारी बात याद रखिएगा, अपनी जिंदगी में इसे अमल कीजिएगा और सुनते रहिएगा।
3: Only on MGM 90.8 FM.

0: Let's talk about mental health and self-love. Hello, you are listening MGM 90.8 FM. हमारे साथ है जैकेट्रिक्स डॉक्टर अमल पात्रीकर सर। तो सर,
1: और सर एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि किसी को सेल्फ लव की जर्नी शुरू करनी है तो वो हर दिन किस तरीके से उसके तरफ जाए, या तीन छोटी हैबिट जो वो अपने अंदर एडॉप्ट कर सकता है सेल्फ लव के रिलेटेड।
2: सेल्फ लव के लिए मैंने जैसे कहा कि देखो अपनी बाउंड्री सेट करना, आपको अगर आप आपकी बाउंड्री सेट कर पा रहे हो उसका रियलाइजेशन होना, तो ये चीज के लिए देखो खुद उसके लिए पहले तो सेल्फ टॉक, जैसे बताया कि आप खुद से सेल्फ टॉक करो, आपको खुद को सेल्फ टॉक करके बताओ कि हाँ ये मेरे पॉजिटिव चीजें हैं, ये मेरे वीकनेसेस है, ये स्ट्रेंथ है, और इसके इस बाउंड्री से मेरा बाहर जाना कि वो दिक्कत आ सकती है, मुझे खुद को हार्म कर सकता है, वो पहचानना जरूरी होता है सबको अपने। एंड क्या है ना, हर चीज एक इंडिविजुअलिटी है, हर आदमी एक अलग चीज है, तो अपन आप खुद को कंपेयर भी मत करो। मुझे ये पहला रहता है कि बहुत बार हम कंपेरिजन करते हैं तो उससे हमें और स्ट्रेस आता है कि उसका सही है गलत है, पर आपका हर एक आदमी हर एक पर्सन इज एन इंडिविजुअल थिंग। पहले ये एक्सेप्ट करो कि हमारे में भी वीकनेस हो सकते हैं, एक्सेप्ट दैट ये चीजें, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, कुछ चीजें मेरे से होगी या कुछ चीजें नहीं होगी। दूसरा, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, अपने अपने लिमिटेशन है, हम सबको साइमल्टेनियसली खुश नहीं कर सकते हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर हेल्थ। तो और उसके लिए मैं खुद चाहूंगा कि आप कुछ हेल्दी हैबिट्स भी लाओ, जैसे ईट हेल्दी फूड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, रेस्ट या स्लीप जरूरी है आपका, एंगर कंट्रोल, ये चीजें अगर आप खुद में इम्प्लीमेंट करते हो तो फिजिकली इमोशनली एंड आप मेंटली आप फिट रहते हो, तो आपको सही गलत की समझ आती है, तो स्टार्ट इन अ दैट वे। एंड बाकी जैसे मैं कहूंगा अगेन सेम, सेट बाउंड्रीज, अगर आप सामने वाले को सम्मान करो, उसके इमोशंस का सम्मान करके अगर आप ये चीज करते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, और आप हार्म करने के लिए आप बस आप उसको कह पा रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट चीज कि हाँ ये चीज मैं नहीं कर सकता हूँ।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बात करके, एंड इम्पोर्टेंट बातें हमें पता चली रिलेटेड टू सेल्फ लव। सो ये सारी बातें याद रखिएगा दोस्तों, अपनी जिंदगी में खुद से प्यार कीजिएगा और खुश रहिएगा। Stay tuned. Here's Will
3: with RJ Adnan. Only on MGM 90.8 FM. Here's Will with RJ Adnan. Only on MGM 90.8 FM.

हर शहर की ना तो अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान होती है। और उस पहचान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है उसकी धरोहर का, हमारा अपना शहर छत्रपति संभाजीनगर, जिसे हम प्यार से सिटी ऑफ गेट्स भी कहते हैं, याद तो है ना आपको। और ये दरवाजे सिर्फ पत्थरों से और लकड़ियों से नहीं बने, बल्कि इनमें छुपी है हमारे शहर की सदियों पुरानी कहानी, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान। यू नो व्हाट, भड़कल गेट हो, दिल्ली गेट हो, रोशन गेट हो, या फिर कोई भी ऐतिहासिक धरोहर, ये सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई हुई विरासत है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी धरोहर को जाने, उनकी अहमियत समझे और दूसरों तक वो कहानियां पहुंचाए, क्योंकि जब हम अपनी विरासत को संभालते हैं तभी हमारी पहचान आने वाले कल तक कायम रहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी है मेरी माटी मेरी धरोहर अभियान, मेरे शहर की पहचान मेरी जिम्मेदारी है। तो अपने शहर की जो धरोहर है, जो अपने यहाँ पर ऐतिहासिक किले है, गेट्स है और भी जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो उनको संभालना, उनको मेंटेन करना और उनकी साफ सफाई रखना, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, बस प्रशासन की नहीं, मेरी और आपकी भी है। तो ये बात का भी ख्याल रखिए, क्योंकि यही तो इतिहास है जो हम आने वाले जनरेशन तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए फिर अपने धरोहर को सिर्फ देखे नहीं, उसे जाने समझे और संभाल कर रखे। तो वादा कीजिएगा कि अपनी धरोहर संभालने के लिए आप भी मदद करेंगे, क्योंकि मेरी माटी मेरी धरोहर। स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान। All is well with RJ Adnan.

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, अदनान आपके साथ है और आपको गिफ्ट जीतने का एक मौका भी देता है इन द शो। और शो के स्टार्टिंग में ना तो मैंने आपको एक म्यूजिक सुनाया था और वो म्यूजिक सुनने के बाद आप मुझे बताने वाले थे कि कौन से गाने की म्यूजिक है। एक बार वो म्यूजिक फिर से दोहराते हैं। और ये गाना कौन सा है आपने गेस किया, इसका जवाब दिया तो बहुतों का मुझे जवाब आया है। पहले मैं जवाब का बता दूं कि ये गाना है चुरा लिया है तुमने वो दिल को। सो ये गाना था और इसका एकदम सही सही जवाब दिया है मुनीर खान ने। सो कांग्रेचुलेशन मुनीर खान जी, आज आप विनर बन चुके हो। आपको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है, गिफ्ट वाउचर। अपना गिफ्ट कलेक्ट करने स्टूडियो जरूर आइएगा। सो दोस्तों, मुनीर जी ने सबसे पहले जवाब दिया, इस वजह से वो आज के विनर बन चुके हैं। सो आपको भी ऐसे गिफ्ट जीतना है, गिफ्ट वाउचर जीतना है, तो मैंने पूछे हुए सवालों के या तो पहेलियों के जवाब देते रहिए, गिफ्ट जीतते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के साथ इंफोटेनमेंट के लिए सुनते रहिए।
1: ओनली ऑन MGM 90.8।

हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया। आप आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM। बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि आरजी अदनान आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है, मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। डीएम कीजिए का इंस्टा पर आरजी अदनान इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एनजीएम 90.8 एफएम।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है तुम तो

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न ला

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां
0: अपना रेडियो, अपनी बातें।

0: बचता है, अननोन नंबर होता है और हम सोचते भाई कोई स्कैमर तो नहीं होगा ना, ये एक मन में सवाल आ ही जाता है। लेकिन अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। आजकल हम देख रहे हैं कि अननोन कॉल्स बहुत आते हैं, मतलब हमारा बंदा बंदी दोस्त अहबाब फैमिली मेंबर्स हमें इतने कॉल नहीं करते जितने ये फेक कॉल आते हैं, फ्रॉड वाले कॉल हमें आते हैं हर दिन। तो आप TRAI, ये क्या है पता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1601 नंबर से सीरीज लॉन्च की है। जी हाँ, जिसका मेन मोटिव क्या है, जो फ्रॉड कॉल है, फेक कॉल है, उनको एकदम आसान तरीके से आइडेंटिफाई करना। मतलब क्या है, यूटिलिटी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर अगर आपको कोई कॉल करेगा, मतलब जो लीगल हो, जो आपके पास कोई एडवर्टाइजमेंट पहुंचाना चाहती हो, कोई सर्विस देना चाहती हो और रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने के साथ, तो उनको ये नंबर दिया जाएगा। 1601 से इस सीरीज का स्टार्ट होगा, तो आप समझ जाओगे कि यार ये किसी दोस्त का कॉल नहीं है, किसी कंपनी का कॉल है और ये ट्रस्टेबल कॉल है। बट इतना है कि ये फ्रॉड कॉल नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए या सर्विस प्रोवाइडर का नंबर है, तो ये क्लियर हो जाएगा। एंड और एक बात, अगर 1601 से भी आपको कॉल आ रहा है और वो ट्रस्टेबल है, अगर सामने वाले बंदे ने आपसे OTP, पिन या बैंक डिटेल मांगी, तो भाई उसको बिल्कुल भी मत दीजिएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ऑफिशियल्स खुद कहते हैं कि हम खुद से आपका OTP, बैंक अकाउंट, CVV कभी भी नहीं मांगते। तो कोई भी कॉल हो, अपना ये डिटेल किसी को मत दीजिएगा। तो फोन पर भी थोड़ा स्मार्ट बनिए, क्योंकि स्कैम से बचने का सबसे पहला स्टेप है अलर्ट रहना। जितना आप अलर्ट रहोगे उतना सेफ रहोगे। और ये बात मुझे और आपको तो समझ में आ जाती है, लेकिन जो हमारे दादा दादी है या मम्मी पापा है, उनको भी जरा समझाइएगा और ऐसे स्कैम से थोड़ा बच के रहिएगा। बाकी बी सेफ, बी केयरफुल, बस स्क्रॉल मत कीजिए, स्मार्ट भी बनिए। एंड बाकी तो सुनते रहिए।
1: Only on MGM 90.8 FM.

अक्सर कहते हैं कि एम्बुलेंस कभी वक्त पर नहीं पहुंचती, और ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हमारे सामने है। एंड जब एक्सीडेंट होता है तो वक्त पर एम्बुलेंस ना पहुंचने की वजह से तो बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। तो अब एम्बुलेंस की रिस्पांस टाइम को लेकर NHAI ने सख्त रूल लागू किए हैं, जिसको फॉलो करना कंपलसरी हो चुका है हर एम्बुलेंस ड्राइवर को और उस पर काम करने वाले लोगों को। नए रूल्स के हिसाब से क्या है कि अगर टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के एरिया में एक्सीडेंट होता है तो इमरजेंसी कॉल रिसीव होने के 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस को एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचना कंपलसरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंचती तो ऑपरेटर पर 10,000 का फाइन भी लग सकता है, और 10 मिनट के बाद हर एडिशनल मिनट पर 5,000 की पेनल्टी भी उन्हें लग सकती है। मतलब 10 मिनट में एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो 11वें मिनट पर 5,000 एक्स्ट्रा पेनल्टी उन्हें लग सकती है। ऐसे इस रूल्स और रेगुलेशन में लिखा गया है, जो कि नए तरीके से अभी लागू कर दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है, जैसे कि एक्सीडेंट के बाद एम्बुलेंस को इंजर्ड पर्सन को कॉल रिसीव होने के 1 घंटे के अंदर नजदीकी हॉस्पिटल तक ले जाना है। इसमें भी अगर डिले हुआ तो 10,000 का फाइन लग सकता है। देखिए, एक्सीडेंट के बाद ना हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी वही एक मिनट किसी की जिंदगी और मौत के बीच का एक डिफरेंस बन सकता है। इसलिए अगर आप गाड़ी हाईवे पर चला रहे हो या फिर किसी नॉर्मल रास्तों पर, स्पीड से ज्यादा सेफ्टी को प्रायोरिटी दीजिएगा। और अगर एक्सीडेंट दिखा तो सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में मत बैठिए, मदद के लिए इमरजेंसी सर्विस को कॉल कीजिए। और ये अभी ऐसे कुछ रूल्स और रेगुलेशन NHAI ने सभी हाईवे पर जितने एम्बुलेंस है ना तो उनको लागू किए है, तो इसको भी याद रखिएगा। एंड 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंचेगी, यही अभी हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर 10 मिनट में डिलीवरी पहुंच जाती है खाने की, लेकिन एम्बुलेंस पहुंचने में टाइम लगता है। शायद से ऐसे रूल्स और रेगुलेशन से होप्स ये डिफरेंस खत्म हो जाए। बाकी आपकी भी जिम्मेदारी है, गाड़ी आहिस्ता से चलाइए, आराम से चलाइए, क्योंकि जान है तो जहान है मेरी जान। बाकी तो RJ अदनान के साथ अभी शो बहुत बाकी है, सुनते रहिए।

0: हर शहर की ना तो अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान होती है।
1: Only on MGM 90.8 FM.
0: और उस पहचान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है उसकी धरोहर का। हमारा अपना शहर छत्रपति संभाजीनगर, जिसे हम प्यार से सिटी ऑफ गेट्स भी कहते हैं, याद तो है ना आपको। और ये दरवाजे सिर्फ पत्थरों से और लकड़ियों से नहीं बने, बल्कि इनमें छुपी है हमारे शहर की सदियों पुरानी कहानी, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान। यू नो व्हाट, भड़कल गेट हो, दिल्ली गेट हो, रोशन गेट हो, या फिर कोई भी ऐतिहासिक धरोहर, ये सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई हुई विरासत है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी धरोहर को जाने, उनकी अहमियत समझे और दूसरों तक वो कहानियां पहुंचाए, क्योंकि जब हम अपनी विरासत को संभालते हैं तभी हमारी पहचान आने वाले कल तक कायम रहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी है मेरी माटी मेरी धरोहर अभियान, मेरे शहर की पहचान मेरी जिम्मेदारी है। तो अपने शहर की जो धरोहर है, जो अपने यहाँ पर ऐतिहासिक किले है, गेट्स है और भी जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो उनको संभालना, उनको मेंटेन करना और उनकी साफ सफाई रखना, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, बस प्रशासन की नहीं, मेरी और आपकी भी है। तो ये बात का भी ख्याल रखिए, क्योंकि यही तो इतिहास है जो हम आने वाले जनरेशन तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए फिर अपने धरोहर को सिर्फ देखे नहीं, उसे जाने समझे और संभाल कर रखे। तो वादा कीजिएगा कि अपनी धरोहर संभालने के लिए आप भी मदद करेंगे, क्योंकि मेरी माटी मेरी धरोहर। स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान। All is well with RJ.

0: से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
3: रंगभूमीचा कला विश्वाचा अनुभव घ्यायचाय, मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026। नाट्य प्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमाची खास मेजवानी। या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भाण, सवाल जवाब, एमएचजे सुटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्य प्रयोग। मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगीशा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह एमजीएम परिसर छत्रपती संभाजीनगर। तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे।

0: अक्सर हमने एक लफ्ज के बारे में सुना होगा, सेल्फ लव। कहना रील्स में हमने देखा है या मोटिवेशनल वीडियोस में देखा है, और हमारे दोस्त भी कहते हैं जब ब्रेकअप होने के बाद, भाई बस हो गया, आप खुद से प्यार कर, सेल्फ लव। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, तो इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है साइकेट्रिक्स डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर। हेलो सर, आपका स्वागत है।
1: हेलो,
0: कैसे हो सर आप?
1: आई एम गुड
0: सर। आपने किया है खुद से प्यार, सेल्फ लव?
1: हाँ बिल्कुल करता हूँ।
0: कब से?
1: उसके बारे में समझ आई तब से, और उसके वैल्यूज पता चले, देन आई स्टार्टेड लिविंग माय सेल्फ।
0: एग्जैक्टली, जब खुद की वैल्यू पता चलती है, उस चीज की वैल्यू पता चलती है, तो इंसान सेल्फ लव करता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे सर, क्योंकि सेल्फ लव ये बहुत सुना है, लेकिन सेल्फ लव और सेल्फिश होने में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है?
1: देखो, सेल्फ लव यानी क्या है ना, कि खुद की वैल्यू करना, ठीक है। जैसे हमें फिजिकली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली हमें खुद को फिट रखने के लिए हम जिस तरह से उसके लिए हम अटेम्प्ट करते हैं या हम ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें अपने अंदर से खुश रहना है, मुझे फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करना है, वैल्यूज भी मुझे बरकरार रखने हैं, और मुझे दूसरों का भी रिस्पेक्ट करना है, देन हम उसे कहते हैं कि हाँ ये सेल्फ लव है। अब सेल्फ लव में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जिसमें कि क्या होता है, बहुत सारे लोग है ना आउट ऑफ द वे जाके खुद को, यानी ट्रबल अगर हो रहा है या परेशानी हो रही है तो भी दूसरों के लिए वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट इसमें क्या होता है ना कि उनमें उससे स्ट्रेस आ सकता है, उनमें फिजिकल एग्जर्शन आ सकता है, बर्नआउट हो सकता है, तो लोगों को उसके लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। तो हम लोग हमारे खुद के लिए, हमारे फैमिली के लिए हम कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तब उसे कहा जाता है कि सेल्फ लव। इक्वली बट हम लोग दूसरे के वैल्यूज भी रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दूसरों को भी उनकी इमोशनल और उनकी भावनाएं का भी हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पर हम हमारे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मैं खुद के लिए कुछ चीजें करूंगा जो कि मेरे घर वाले या मेरे लिए बेनिफिशियल हो, या मेरे फिजिकली मुझे हार्म ना करे, इमोशनली हार्म ना करे, साइकोलॉजिकली हार्म ना करे, और मैं कुछ बाउंड्री सेट करूं, तो हम उसे कहते हैं कि सेल्फ लव है। सेल्फिश मींस क्या है ना, उसमें चीजें सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लिए ही करना, दूसरे के वैल्यूज का सम्मान नहीं करना, अगर उसे दिक्कत आ रही है मेरे से कुछ बात करने से, या मैं एक चीज इस तरह से डिसीजन दे रहा हूँ कि दूसरों को हार्म हो रहा है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसे तकलीफ हो रही है दूसरों को, पर मैं मेरे ही बारे में सोच रहा हूँ, देन हम उसे कहते हैं कि देन दिस इज सेल्फिश लव। बट सेल्फ लव में इट इज नॉट देयर। सेल्फ लव में यह है कि हम खुद के लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करते हैं, हम हमारा खुद का ख्याल करते हैं, क्योंकि मैं जैसा, अगर मेरे कोई प्रिय व्यक्ति हो या मेरा कोई प्रिय फ्रेंड हो जिसके हम आदर सम्मान करते हैं, उसे रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह हम खुद का भी करना चाहिए, हमारे खुद के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में सोच, तब उसे कहा जाता है कि दिस इज सेल्फ लव।
0: तो सेल्फ लव पर हम और भी ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन कुछ ही देर में, तब तक स्टे ट्यून्ड।
2: Only on MGM 90.8 FM.

0: Let's talk about mental health and self-love. You are listening to MGM 90.8 FM. और हमारे साथ है डॉक्टर अमोल पात्रीकर साइकेट्रिक्स। तो आज हम बात कर रहे हैं अबाउट सेल्फ लव के बारे में।
1: अगर हम हर बार दूसरों को प्रायोरिटी देते रहे और खुद को इग्नोर करें तो इसका मेंटल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है?
2: उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अभी क्या है, हमें हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि लोग आउट ऑफ द वे जाके सिर्फ सामने वाले उस व्यक्ति को बुरा ना लगे या उसकी नजर में हमारा इम्प्रेशन बना रहे, इसलिए वो आउट ऑफ द वे जाके उनका एफिशिएंसी व कैपेसिटी नहीं होने के बाद भी वो उनके लिए चीज़ें करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कोई फाइनेंशियल चीज़ें, किसी को हेल्प चाहिए, अभी वो हमें मांग रहे हैं, हम खुद उसमें नहीं है उस पोजीशन में, बट मैं क्या करूँगा एट द कॉस्ट ऑफ, यानी मेरे पर्सनल फैमिली सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज करके मैं उसको समझो अगर मैंने कुछ पैसे दे दिए, फिर होगा क्या कि एग्जाम्पल में कि उसके वजह से मुझे दिक्कत आएगी फाइनेंशियली, मुझे परेशानी होगी, मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा, मेरी फैमिली या मैं खुद सफर होऊंगा बस उसको ठीक करने के लिए। तो क्या होता है, मेंटली ये बहुत एग्जॉस्टिव है। तो क्या है कि अगर आपको आपके दिमाग में आप आउट ऑफ द वे जाके सामने वाले को ना नहीं कह पा रहे, यानी आपको पता है कि ये चीज मुझे करना जरूरी है बट मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरा सेल्फ एस्टीम बरकरार रहे, मेरा इंप्रेशन उसके लिए अच्छे रहे, तो मैं खुद का कॉम्प्रोमाइज करूँ, तो आपको देखो एग्जॉस्टन होगा, बर्नआउट हो जाओगे, आप चिड़चिड़े बन जाओगे, आपको डिप्रेसिव फीलिंग आ जाएगी, उदासी मायूसी आएगी। और दूसरा क्या रहेगा, आपके जो खुद के गोल और ऑब्जेक्टिव है आप उसको भी, उससे भी आप डिवेट हो जाते हो इस चीज। तो क्या है ना कि दिस इज नॉट द थिंग, आप करो, आप दूसरों को खुश कर सकते हो, दूसरे के लिए करना जरूरी है, बट अपनी खुशी या उस वक्त अगर उस चीज का मुझे स्ट्रेस आ रहा है तब मैं वो चीज वो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो क्या है कि आप करना चाहिए बट नॉट खुद का फिजिकली भी आप सफर हो, साइकोलॉजिकली सफर हो, इमोशनली आपको स्ट्रेस आ रहा है, दिस इज वी से कि हाँ कि यहाँ पर हमें थोड़ी सी बाउंड्री सेट करनी चाहिए।
0: तो ये सारी बात याद रखिएगा और जिंदगी से जस्ट प्यार किए जा मेरी जान। और भी अपनी बातें शुरू रहेगी बट कुछ ही देर में, तब तक स्टे ट्यून्ड।
3: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: வெல்கம் பேக். யூ ஆர் லிஸ்னிங் MGM 90.8 FM. और आज हम बात कर रहे हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर के साथ अबाउट सेल्फ लव इस टॉपिक पर.
1: और सर, बहुत लोग जब नो कहते हैं, ना कहते किसी भी चीज को और अपनी बाउंड्री सेट करते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें गिल्ट फील होता है कि यार मैंने ना कह दिया, ये सही है या नहीं. तो इस गिल्ट से डील कैसे करें?
2: देखो, अभी गिल्ट क्या है, गिल्ट इज अ नॉर्मल हैबिट फॉर्म, यानी क्या होता है, इट्स एक नॉर्मल थॉट है, वो हमें आ सकता है किसी भी चीज के लिए. पर मैं यही कहूंगा, देखो गिल्ट में क्या है ना, कुछ चीजों के लिए ठीक रहता है, यानी वो आया तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तब हम सामने वाले को सॉरी कहते हैं, या फिर हमें अंदर से खराब लगता है तो हम उसमें खुद में इम्प्रोवाइज करने के लिए करते, उसके लिए ठीक है. बट अगर गिल्ट घर कर गया तो फिर वो आपको आपको उसके बारे में आपको पास्ट में ले जाता है, फिर पास्ट में आप उस पास्ट में सोचते हो, उसमें ही फंस जाते हो कि मैंने ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, और उसके वजह से फिर से जिसमें डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है. गिल्ट फीलिंग अगर बहुत ज्यादा देर तक रही तो उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं, आप फिजिकली भी आप इन्हें वीक फील करते हो, डीमोटिवेटेड फील करते हो, जैसे मैंने कहा अपना खुद का गोल्स और ऑब्जेक्टिव से आप डेविएट होने लगते, देन इट इज हार्मफुल. पर अभी हमें ये क्या करना चाहिए, पहली बात यहां से स्टार्ट करना चाहिए कि भैया आई एम गिल्टी, ये यूज वर्ड यूज करने के बजाय हम ये खुद को ये कहे कि आई हैव गिल्ट फीलिंग, ताकि क्या है, देखो आपका इंडिविजुअलिटी है, आप गिल्टी नहीं हो, आपका उस तरीके फीलिंग है और उस थॉट के ऊपर हमें काम करना चाहिए. सबसे पहले हमने इस चीज को चैलेंज करें, इस थॉट को, कि भाई ये चीज उस वक्त पे, इस चीज के लिए, उस समय के लिए मैंने जो डिसीजन लिया वो जरूरी था, उसके प्रोज और कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे उस वक्त, उसके सही और गलत चीजें क्या थी. माना अगर मैंने ये खुद से सेल्फ टॉक भी करना होना जरूरी है कि अगर मैंने उस वक्त पे इस व्यक्ति को कि मैंने ना कहा, अगर मैं हाँ करता था तो मुझे ये चीज लाइफ में फेस करनी पड़ती थी, आज मैं ना कर रहा हूँ तो ना भी चीज की है तो वो आपने अच्छा किया है, आपने उसको हार्म नहीं किया है, ना करना मीन्स हार्म नहीं है, हाँ आपने रादर क्या किया है कि आपने उसको अच्छे से सीधे तरीके से आपने अच्छे से उसे बताइए कि हाँ ये मैं चीज नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन दैट कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आई एम नॉट गिल्टी, बट हाँ गिल्ट फीलिंग है और उसे मैं सुधारूंगा, बाय मिस्टेकली मैं उससे बात कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सामने वाले को मैंने हर्ट किया है तो आप उसे सॉरी कह दीजिए और उसे ये बताइए कि ये चीज है, इस वजह से मैं नहीं कर सकता, बट डोंट गिव दैट मच एक्सप्लेनेशन. आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आप देना चाहते हो तो दो, बट साइमल्टेनियसली आप खुद के लिए अगर आपका अगर सुकून ठीक रह रहा है, आपका हैप्पीनेस बरकरार रह रहा है, आपको उस चीज को स्ट्रेस नहीं आ रहा.

0: है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ये चीज एक्सेप्ट करना जरूरी है।
1: यस सर। तो सर के साथ अपनी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, कीप मुस्कुराना, लेकिन आप कहीं मत जाना, लौटे के कुछ देर बाद, तब तक स्टे ट्यून्ड।
2: Only on MGM 90.8 FM.

ਕਟੜੀ ਵਾਂਗ ਵੱਲ ਪਾਪੜੀ ਮੱਤਿਆ ਕੱਢੁਣ ਪਏ ਥੁੜਾ।

0: जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है खुद से प्यार करना, वही आपको सीखना चाहिए। हेलो, आपने ट्यून किया है MGM 90.8 FM और हमारे साथ है साइकेट्रिक्स अमोल पात्रीकर सर।
1: और सर, अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना सेल्फिशनेस नहीं बल्कि इमोशनल मैच्योरिटी की निशानी हो सकती है क्या, और इसको कैसे समझे खुद भी और बाकी सब लोग?
2: देखो, बिल्कुल इमोशनल मैच्योरिटी है, क्योंकि देखो पहले सेल्फ रियलाइजेशन होना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी। मुझे ये पता है कि मैं ये चीज नहीं कह पा रहा हूँ सामने को, तो ये चीज क्योंकि मेरी कुछ प्रायोरिटीज है, मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ मेरे हैप्पीनेस के लिए। ये रियलाइजेशन होना इटसेल्फ इज अ मैच्योरिटी ना। आपको पता है कि ये मेरी चीजें है, मैं यहाँ तक मेरी कैपेसिटी है, यहाँ तक मैं कर सकता हूँ, बट आउट ऑफ द इस कैपेसिटी के बाहर मुझे अगर मैं करूँ तो मुझे इससे परेशानी हो सकती है, मुझे दिक्कत आ सकती है पर्सनल लेवल पे। तो वो चीज अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें देखो वो मैच्योरिटी है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन आ रहा है। दूसरा, आपको आपके स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस पता है, वो भी सेल्फ रियलाइजेशन है, एक्सेप्टेंस है उसके बारे में। आप खुद के अंदर, आप इफ यू सी इनटू योर सेल्फ, आप खुद के अंदर देखते हो तो आपको ये चीजें पता है कि हाँ ये मेरे स्ट्रेंथ है, ये मेरे वीकनेसेस है, आपको वो चीज का बहुत क्लियर ज्ञान है। इट्स अ साइन ऑफ अगेन मैच्योरिटी। तीसरा, कि आप कॉन्फिडेंटली सामने वाले को ये कह सकते हो, आप उसे ये मैसेज दे सकते हो, क्योंकि क्या है बहुत सारे लोग तो वो बात ही नहीं कर पाते हैं। बात करना इटसेल्फ इज अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, कि मुझे बहुत क्लियरली सामने वालों को बताना है, अच्छे से बताना है, क्लियरली बताना है, बट एंड हमें हेट्रेडली नहीं बताना है या उसे बहुत खराब लगे इस तरह से भी नहीं बताना है। तो ये जिस तरह का कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इटसेल्फ इज एन इमोशनल मैच्योरिटी, क्योंकि वो इट्स अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि सामने वाले को आपको नाराज करना है या ना कहना है। सो दीज आर ऑल थिंग्स की सेल्फ एक्सेप्टेंस है, सेल्फ रियलाइजेशन है, एंड हमारा कंट्रोल्ड है। उसे अगर हमें मैसेज देना है या बताना है तो हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में है, एंड वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो ये चीजें डेफिनेटली इट शोज कि आप में वो इमोशनल मैच्योरिटी आती है।
0: तो सर के साथ अपनी बातों का सिलसिला अभी यूं ही जारी रहेगा। ये सारी बात याद रखिएगा, अपनी जिंदगी में इसे अमल कीजिएगा और सुनते रहिएगा।
3: Only on MGM 90.8 FM.

0: Let's talk about mental health and self-love. Hello, you are listening MGM 90.8 FM. हमारे साथ जैकेट्रिक्स डॉक्टर अमल पात्रीकर सर। तो सर,
1: और सर एक आखिरी सवाल आपसे है कि किसी को सेल्फ लव की जर्नी शुरू करनी है तो वो हर दिन किस तरीके से उसके तरफ जाए, या तीन छोटी हैबिट जो वो अपने अंदर एडॉप्ट कर सकता है सेल्फ लव के रिलेटेड।
2: सेल्फ लव के लिए मैंने जैसे कहा कि देखो अपनी बाउंड्री सेट करना, आपको अगर आप आपकी बाउंड्री सेट कर पा रहे हो उसका रियलाइजेशन होना, तो ये चीज के लिए देखो खुद उसके लिए पहले तो सेल्फ टॉक, मैं जैसे बताया कि आप खुद से सेल्फ टॉक करो, आपको खुद को सेल्फ टॉक करके बताओ कि हाँ ये मेरे पॉजिटिव चीजें है, ये मेरे वीकनेसेस है, ये स्ट्रेंथ है, और इसके इस बाउंड्री से मेरा बाहर जाना कि वो दिक्कत आ सकती है, मुझे खुद को हार्म कर सकता है, वो पहचानना जरूरी होता है सबको अपने। एंड क्या है ना, हर चीज एक इंडिविजुअलिटी है, हर आदमी एक अलग चीज है, तो अपन आप खुद को कंपेयर भी मत करो। मुझे ये पहला रहता है कि बहुत बार हम कंपेरिजन करते हैं तो उससे हमें और स्ट्रेस आता है कि उसका सही है गलत है, पर आपका हर एक आदमी, हर एक पर्सन इज एन इंडिविजुअल थिंग। पहले ये एक्सेप्ट करो कि हमारे में भी वीकनेस हो सकते हैं, एक्सेप्ट दैट ये चीजें, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, कुछ चीजें मेरे से होगी या कुछ चीजें नहीं होगी। दूसरा, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, आपने अपने लिमिटेशंस है, हम सबको साइमल्टेनियसली खुश नहीं कर सकते हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर हेल्थ। तो और उसके लिए मैं खुद चाहूंगा कि आप कुछ हेल्दी हैबिट्स भी लाओ, जैसे ईट हेल्दी फूड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, रेस्ट या स्लीप जरूरी है आपका, एंगर कंट्रोल, ये चीजें अगर आप खुद में इंप्लीमेंट करते हो तो फिजिकली, इमोशनली एंड आप मेंटली आप फिट रहते हो, तो आपको सही गलत की समझ आती है, तो स्टार्ट इन अ दैट वे। एंड बाकी जैसे मैं कहूंगा अगेन सेम, सेट बाउंड्रीज, अगर आप सामने वाले को सम्मान करो, उसके इमोशंस का सम्मान करके अगर आप ये चीज करते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, और आप हार्म करने के लिए आप बस आप उसको कह पा रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट चीज कि ना ये चीज मैं नहीं कर सकता हूँ।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बात करके, एंड इम्पोर्टेंट बातें हमें पता चली रिलेटेड टू सेल्फ लव। सो ये सारी बातें याद रखिएगा दोस्तों, अपनी जिंदगी में खुद से प्यार कीजिएगा और खुश रहिएगा। Stay tuned.
3: Only on MGM 90.8 FM. Only on MGM 90.8 FM.

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: सोमवार है,
1: अरे बाबा है,
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है?
2: ये सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
3: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
2: ये है एनजीएम 90.8 एफएम।

ಚಂದ್ರಬಾಹು ಪಾಂಡುರಂಗ ಚಂದ್ರಬಾಹು.